आज पर दस्तखत किए थे। ताहम इस मफाहिमत नामे के निफाज और आलमी तेल व गैस की बरामदाद के लिए इंतहाई अहम आबनाए हुर्मुज में जहाज़रानी के इंतजाम पर इख्तलाफात के बाइस मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज़म जाहिर किया है कि जब तक वो ओहदे पर बरकरार हैं गज़ा या मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होने देंगे। उनका यह बयान यूनाइटेड अरब लीग के रहनुमा मंसूर अब्बास के जवाब में सामने आया, जिन्होंने कहा था कि फ़लस्तीन पहले ही एक रियासत के तौर पर मौजूद है, दुनिया के बेशतर ममालिक इसे तस्लीम करते हैं। मंसूर अब्बास ने इसराइल और अमरीका पर भी जोर दिया कि वह फ़लस्तीन को तस्लीम कर लें। नेतन्याहू ने कहा कि जब तक मैं वज़ीर आज़म हूँ ईरान के ज़ेर कंट्रोल कोई फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी। गुज़श्ता रोज़ अरब शहर तैयबा में अपनी पार्टी की जनरल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मंसूर अब्बास ने कहा था कि उनकी पार्टी इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन की ख्वाहा है। अब्बास ने वाशिंगटन और तल अबीब से फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा करते हुए कहा कि फ़लस्तीन की रियासत मौजूद है और दुनिया उसे तस्लीम करती है। नेतन्याहू के ये बयान 27 अक्टूबर को होने वाले क्नेसेट के इंतखाबात से कबल सामने आए हैं, जबकि राय अम्मा के जायजों से मालूम होता है कि उनकी लिकूद पार्टी और उसके इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए दरकार 61 नशस्तें हासिल करने में नाकाम नज़र आ रही हैं। लिकूद पार्टी जिसके पास इस वक्त 32 नशस्तें हैं हालिया सर्वे में तेज़ी से नीचे आई है और जुमे को सामने आने वाले एक पोल में उसे सिर्फ 20 नशस्तें मिलती दिखाई गई हैं। चैनल 13 के 19 अगस्त को शाया करने वाले एक सर्वे के मुताबिक नेतन्याहू की लिकूद पार्टी और उसके इंतहाई दाएं पाजू और कदामत पसंद कट्टर मजहबी इत्तेहादियों को मजमू तौर पर 51 नशस्तें मिलने की पेशगोई की गई है, जो पार्लिमानी अक्सरियत से 10 नशस्तें कम हैं। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबलूस के जनूब में वाक़ कस्बे कसरा में इतवार के रोज़ गैर कानूनी इसराइली आबादकारों ने 3 फ़लस्तीनी ख़ानदानों के घरों का मुहासरा 15वें दिन भी जारी रखा, जबकि आबादकारों के एक और ग्रुप ने बैतुल लहम के करीब फ़लस्तीनियों की ज़मीनों से जैतून के दरख्त और अंगूर के बागात उखाड़ फेंके। वाफा न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि गैर कानूनी आबादकार इसराइली अफवाज को देख रेख में कसरा के इलाके रासलाइन में 3 घरों का मुहासरा जारी रखे हुए हैं और इसराइली अफवाज इलाके में आमदोरफ्त को रोक रही हैं। वफा के मुताबिक इसराइली अफवाज ने उनमें से एक घर को फौजी अड्डे में तब्दील कर दिया है और खिड़कियों से फर्नीचर और दीगर सामान बाहर फेंक कर नुकसान पहुँचाया है। यह खानदान हालिया महीनों में आबादकारों की तरफ से घरों में घुसने और उन पर कब्जा करने की बार बार की जाने वाली कोशिशों के बाद अपनी इमलाक की हिफाजत के लिए 24 घंटे घरों में ही मौजूद हैं। बाद अजाएं इसराइली अफवाज ने रासुल ऐन जाने वाले रास्ते बंद कर दिए और इलाके को बंद फौजी जोन करार दे दिया। एक अलग वाक़े में गैर कानूनी इसराइली आबादकारों ने आज बैतुल लहम के मशरक में वाक़ गाँव अलमुनिया में फ़लस्तीनियों की ज़मीनों से जैतून के दरख्त और अंगूरों की बेलें उखाड़ दीं। वफा के मुताबिक ये वाक़ अलमुनिया और बैतुल लहम के मशरक़ी दीगर इलाकों में फ़लस्तीनी ज़रई ज़मीनों इमलाक और फसलों को निशाना बनाने वाले आबादकारों के बढ़ते हुए हमलों के दौरान पेश आया है।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: रूसी फिजाई दिफाई निज़ाम ने आज सुबह मास्को की तरफ बढ़ने वाले 6 ड्रोन्स को तबाह कर दिया। मास्को के मेयर सर्गी सोबियानिन ने बताया कि रूसी वजारत दिफा की अफवाज ने ड्रोन को रोका और हंगामी खिदमात को उन इलाकों में भेज दिया गया जहां मलबा गिरा था। इब्तदाई इतलात में किसी जानी या अहम नुकसान की निशानदही नहीं की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज़ टैरिफ के मामले पर कनाडा को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और ऑटावा की तजारती पॉलिसियों और वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात पर अपने हमलों की तजदीद की। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि कनाडा एक अमरीकी रियासत बने बगैर उसके तमाम फवायद हासिल करना चाहता है। उन्होंने कनाडा पर अमरीकी ज़रई मसनूआत पर भारी टैरिफ आयद करने का भी इल्ज़ाम लगाया और कहा कि अमरीकी किसानों को बरसों से बड़े पैमाने पर टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। ये बयानात दोनों ममालिक के दरमियान जारी तजारती तनाज़े के दौरान सामने आए हैं। इससे कबल कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने अमरीका पर इल्ज़ाम लगाया था कि वह कनाडा को नुकसान पहुँचाने और तकसीम करने के लिए नए टैरिफ का इस्तेमाल कर रहा है और उन्होंने अमरीकी इकदामात को एक गलत फहमी करार दिया था। कार्नी ने 8 सितंबर से डॉलर के बदले डॉलर जवाबी कार्रवाई का अज़्म जाहिर किया और कहा कि कनाडा ने वाशिंगटन के साथ तजारती मुज़ाकरात उस वक्त मुअत्तल कर दिए जब अमरीका ने ऐसे मुतालबात किए जिन्हें ओटावा कबूल नहीं कर सकता था। दूसरी जानब अमरीकी

क्या आपने कभी सोचा है कि पानी की एक बूंद किसी सल्तनत की तकदीर को कितनी बार बदल सकती है? या क्या पानी का कोई रास्ता सिर्फ खुश्की दूर करने का जरिया होता है, या फिर वो किसी कौम का इंसाफ, उसका हाफिजा और उसका मुस्तकबिल भी अपने साथ बहा कर ले जा सकता है? आज हम अपनी नज़रें पत्थरों और फसीलों से आगे मोड़ रहे हैं और फलस्तीन की उन पोशीदा मगर हयातियाती रगों का सुराग लगा रहे हैं जो हजारों सालों से मुस्तकिल बह रही हैं। हम मिलकर ये दरियाफ्त करेंगे कि कैसे आसमान से गिरने वाली बारिश की एक अकेली बूंद सहरा के किनारे आबाद इन कदीम शहरों में इंजीनियरिंग के एक शाहकार और एक बेमिसाल समाजी निज़ाम में तब्दील हो जाती है। अगर आप किसी शहर या किसी खित्ते को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पानी के साथ उसके ताल्लुक को देखना होगा। बाहर रूम और सहराई आबो हवा के संगम पर वाक़ फ़लस्तीन के जुग्राफी के लिए पानी कभी भी आसानी से मिलने वाली नेमत नहीं रहा। यहाँ बारिशों का मौसम मुख्तसर, गर्मियाँ खुश्क और पानी के कुदरती वसाइल इंतहाई महदूद थे। लेकिन इस सरजमीन पर रहने वाले लोगों ने कुदरत से लड़ने के बजाय उसकी रफ्तार और मिजाज को समझना सीखा। उन्होंने बारिश को सिर्फ एक आर्जी बरकत नहीं समझा बल्कि उसे एक ऐसी मुश्तरका अमानत के तौर पर देखा जिसे जमा करना, दुरुस्त सिमट देना और उसके एक एक कतरे को इंसाफ के साथ तकसीम करना लाजमी था। चुनाते फ़िलिस्तीन में पानी की कहानी इंसान और कुदरत की जबान के दरमियान इसी सबर आजमा मुकालमे से शुरू होती है। यरूशलम के ऐन जुनूब में बैत लहम के करीब हरी भरी वादियों के दरमियान उभरे हुए पत्थर के बहुत बड़े तालाब आपका इस्तकबाल करते हैं। आज सुलेमान के तालाब के नाम से मशहूर ये तीन बड़े खुले हुए वाटर रिजर्व वाय पहली नज़र में महज इंसान के बनाए हुए तालाब दिखाई देते हैं। हालांकि ये जगह कदीम दुनिया के पानी जमा करने और उसे तकसीम करने के सबसे मुतासर कुन निज़ामों का दिल है। अगरचे इसका नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रिवायात से मंसूब है, लेकिन आसार कदीमा के शवाहिद बताते हैं कि यह तालाब दूसरे हैकल के दौर में तामीर किए गए थे और रूमी, बाज़ेंतीनी, इस्लामी और उस्मानी अदवार में उनकी तौसी करके उन्हें तवील सदियों तक इस्तेमाल किया जाता रहा। तीन सीढ़ियों या दर्जों की शक्ल में डिज़ाइन किए गए यह तालाब आसपास के चश्मों के पानी और सर्दियों की बारिशों को जमा करते थे और उनमें लाखों क्यूबिक मीटर पानी ज़खीरा करने की गुंजाइश थी। मगर पानी का यह बहुत बड़ा ज़खीरा ऊंची पहाड़ियों पर आबाद यरूशलम तक कैसे पहुंचाया जाता था? ऐन उसी जगह रूमी, बाज़ेंतीनी और इस्लामी अदवार में परवान चढ़ने वाली इंजीनियरिंग की महारत सामने आती है। पानी को कशिश सकल की ताकत, ढलवान के दुरुस्त हिसाब किताब और गैर मामूली इंजीनियरिंग की बदौलत बुलंद वाटर चैनल और लोअर इक्वेडेट यानी पस्त वाटर चैनल नामी लाइनों के जरिए मीलों दूर तक इंतहाई बारीकबीनी के साथ मुंतकिल किया गया। सुरंगों के जरिए पहाड़ों को काटा गया, कैमरों वाले पुलों के जरिए वादियों को अबूर किया गया और पानी को यरूशलम के जेर ज़मीन

दूसरी तरफ एक और अहम मसला इस गुमराहकुन मालूमात का माखुज का तायुन करना है। गलत मालूमात इंसानी स्मगलरों, इंफरादी सोशल मीडिया अकाउंट्स, मुनज़्ज़म नेटवर्क्स या सियासी मकासद रखने वाले अनासर में से किसने तैयार की, इसके नतायज मुख्तलिफ होंगे। इसलिए सप्ताह में गुमराहकुन मालूमात की मौजूदगी और उसके किसी खास रियासत या सियासी उनसुर की तरफ से मुनज़्ज़म किए जाने के दावे को अलग अलग देखा जाना चाहिए। जब तक ठोस शवाहिद ना मिलें, इस बहरान को बाकायदा मनसूबा बंद इंफॉर्मेशन ऑपरेशन करार देने में तजियाती तौर पर एहतियात बरतना होगी। यूरोपीय यूनियन का रद्दअमल जाहिर करता है कि सरहदी सिक्योरिटी अब बतदरीज डिजिटल स्पेस के साथ मुंसलिक हो जाएगी। विरकॉनन का प्लेटफॉर्म से बहरान के वक्त ज़्यादा मौसर निगरानी, फैक्ट चेकिंग इदारों के साथ मजबूत तआवुन और फौरी मदाखलत का मुतालबा करना यह जाहिर करता है कि यूरोपीय यूनियन डिजिटल सर्विसेज एक्ट के तहत बड़ी टेक कंपनियों से अपनी तवक्कुआत का दायरा सिक्योरिटी बहरानों तक बढ़ा सकती है। रुकन ममालिक का कबल अज़ वक्त इंतबाही निज़ाम और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर बहस शुरू करना भी इस तब्दीली की तायीद करता है। इस तरह इमिग्रेशन मैनेजमेंट में अब न सिर्फ फ्रंटेक्स, सरहदी दीवारें या वापसी के माहदे अहम होंगे, बल्कि डिजिटल मालूमती निज़ाम की निगरानी भी एहतियाती सलामती पॉलिसी का हिस्सा बन सकती है। ताहम ये नुक्ता नज़र अपने साथ एक बड़ा तजाद भी लाता है। गुमराहकुन मालूमात के खिलाफ जंग के नाम पर सोशल मीडिया की निगरानी को बढ़ाना आज़ादी इजहार राय, ज़ाती डेटा के तहफ़ और जायज़ सियासी बहसों को महदूद करने के हवाले से नए तनाज़ात खड़े कर सकता है। ख़ास तौर पर बहरानी सूरत हाल के तस्वुर की मुबहम हदूद यह ख़तरा पैदा करती हैं कि गैर मामूली हालात के लिए तैयार किए गए डिजिटल कंट्रोल टूल्स वक्त के साथ साथ आम सिक्योरिटी मालूमात का हिस्सा बन जाएंगे। नतीजे के तौर पर सिप्ता का बहरान यह जाहिर करता है कि यूरोप की हिजरत की पॉलिसी में सिक्योरिटी की एक नई तह उभर कर सामने आई है। जहां जिस्मानी सरहदी सिक्योरिटी और डिजिटल स्पेस के दरमियान का फ़र्क ख़त्म हो रहा है, वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी अमली तौर पर हिजरत और सरहदी इंतज़ाम के अहम मोहरे बन रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के लिए अब बुनियादी चैलेंज न सिर्फ गैर कानूनी आमद को रोकना होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर नकल व हरकत शुरू होने से पहले ही डिजिटल स्पेस में मौजूद सिग्नल्स का पता लगाना होगा। इस लिहाज से सप्ताह को इस बात की एक अहम अलामत समझा जा सकता है कि यूरोप की मुस्तकबिल की सरहदी सलामती पॉलिसी बयक वक्त एक डिजिटल अर्ली वार्निंग और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी में तब्दील हो सकती है। ओरसाम के शुमाली और मशरक़ी अफ्रीका के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कान देवेजोलू का तज़िया आपकी खिदमत में पेश किया गया है। शोरश ज़दा अफ्रीका।